पल पल में शामिल है। वो कौन है जो मेरी मंजिल है? वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूं?

जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी, वो ख्वाब है या हकीकत है।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. Na vidva la burga.
1: Mirchi, burga.
2: हेलो हाँ जी बोलिए
3: क्या बोलूँ जी
2: आप बोलिए ना
3: कॉल आपने किया आप बोलिए
2: कॉल मैंने किया है हेलो
3: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
3: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
3: नींद में क्या
2: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
3: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
2: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
3: तेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है हेलो
3: फिर कोई
2: यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं
3: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
2: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
3: फोन नहीं कर रहा अभी
2: आप देख बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
3: चप्पल
2: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
3: आराम कर दिया तुम
2: जीना बता रहा हूँ यहाँ से इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
3: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं
5: हेलो शॉप्स Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ प्रॉफिट आएगा
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो 25 घंटे काम करो डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो
8: भाई क्या कर रहा है तू जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट
4: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची टेक योर पार्टनर विद अस नाउ योर बिजनेस विल गो वाओ कॉल नाउ 7070 7687

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
3: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, तो फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
2: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
1: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
0: This initiative is driven by GWM.
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
3: और हम जहां चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं, वो सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ?
1: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।
2: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana.
2: Rambana.
1: Burga, burga. La virtua la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो विनीत जी।
4: हाँ जी
3: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर, क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
4: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
3: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
4: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं, वो बंदे राजस्थान से आने थे वो वहाँ पे रह गए हैं।
4: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
4: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
4: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
4: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर, मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने चल रहे हैं सर?
4: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
4: हेलो हेलो,
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
4: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
3: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
4: अरे कॉफिन ऑफिन कर तो यहाँ क्यों लेके आए तुम?
5: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
4: अच्छा भैया आप मेरे
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
1: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कट कट।
6: अबे कौन है?
5: उत्तपा।
6: उत्तपा कौन?
5: उत्तपा, मैं दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
6: खट खट, हु दैट?
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 9, सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La vie est pas la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello?
4: Hi. You... से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
3: हेलो।
4: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,9,83।
5: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका मुर्गा।
3: तो वही मैं सोच रहा था, मतलब
4: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
3: हाँ जी।
4: कुकड़ों को,
3: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: खट खट।
8: कौन है?
7: अज्जू।
8: अज्जू कौन?
7: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
8: खट खट, हु दैट?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
3: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। आई ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो कि रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
2: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: के न फोन पे बुलाओगे न शाम की करारी चाय लबों से यूं चुराओगे।
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
2: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
3: Hello,
4: ये हंसा से मेरी बात करो भाई.
3: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
4: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
3: हाँ जी.
4: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
3: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
4: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे 3 लोगों ने आपको कॉल किया है, डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
3: मैंने अगर लगा रखा है, क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
4: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
3: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
4: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम.
3: आपका पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई है.
4: दफा 300 ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही
3: है. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
4: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे क्वालिटी लगती है. आप बहस करे जा रही है मेरे से.
3: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
4: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
3: हाँ बताइए
4: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
3: तो ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
4: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे
3: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: कट कट.
7: Who that?
6: जस्सी.
7: जस्सी, कौन सी वाली जस्सी?
6: जस्सी हु हैज कम आंटी जी.
7: कट कट. Who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पैंट काट।
1: कौन है?
0: स्टेन।
1: स्टेन कौन?
0: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
2: खट खट
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: இருக்காரே காரே நேனா.
1: பாலிவுட் போல்டால், பாலிவுட் பாலிவுட் பாலிவுட் போல்டால்,
2: only on Mirchi, it's hot.
3: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
4: I like that song.

0: फखर फिल्म्स नेम।
1: फिल्म का नाम था तक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Mirchi.
1: Es cabana, pues cabana, sacabana. Murga, murga. La vida para la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: विनीत जी।
3: हाँ जी
4: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: हाँ मैं तो चल रही है।
4: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
4: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
3: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बचा जाएगा?
4: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
4: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
4: नहीं वही वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
4: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने चल रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
4: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
3: हेलो हेलो,
4: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
3: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये? है
4: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
3: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
5: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
3: अच्छा भैया आप मेरे जाने वाले थे, बजाने वाले थे?
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
7: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
8: कैसे रुक सकता है?
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
2: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: है।
1: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत। थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: जो हाँ

0: भट्ट
1: भट्ट अरे भट्ट हूँ
0: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है
1: खट खट हू दैट
2: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं, वो सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ।
1: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।
2: रुक, रुक,

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Murga, murga. La vida para la murga.
2: Energy, murga.
3: Hello.
4: Hi. You... से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो

0: दबाइए 55। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए 77। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो,
0: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए, तो दबाइए 4198-9839।
2: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
1: वही मैं सुन रहा था, मतलब लगा।
0: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
1: हाँ जी।
0: कुकड़ू को
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस। सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
5: किड्स आर बैक टू स्कूल। बिजी शेड्यूल्स, होमवर्क, क्लासेस, टेस्ट, फ्यू, सो मच टू डू। वी नो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट हे, लिटिल मोमेंट्स ऑफ फन आर इम्पोर्टेंट टू। सो आर यू रेडी टू मेक योर स्कूल डे अ लिटिल मोर एक्साइटिंग?
6: बिकॉज मिर्ची रिचार्ज ड्रिवन बाई GWM इज कमिंग टू योर स्कूल। मिर्ची आरजेस विल बी देयर विद फन, गेम्स, मस्ती, एक्साइटिंग प्राइजेस एंड लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस। बिकॉज लर्निंग कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजर्व्स अ लिटिल फन टू।
5: दिस इनिशिएटिव इज ड्रिवन बाई GWM.
7: खट खट।
8: Who that?
7: जाहिर।
8: जाहिर, जाहिर हूँ।
7: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
8: खट खट। Who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका फेवरेट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
3: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
2: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
5: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
6: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
7: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: हेलो
1: हेलो, हाँ जी बोलिए।
0: क्या बोलूँ जी, आप बोलिए।
1: आप बोलिए ना।
0: कॉल आपने किया, आप बोलिए।
1: कॉल मैंने किया है। हेलो।
0: अरे बोलो भाई, कॉल तुमने किया, बोलो क्या हुआ।
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार? मैं यहाँ सो रहा हूँ, आपने मुझे कॉल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार। आपने नंबर मेरा डायल किया है, मेरे घर बेल बजी है यार।
0: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा। अरे फोन मैंने नहीं किया यार,
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार, मेरे यहाँ भी बेल बजी है।
0: नींद में है क्या?
1: मैं नींद में ही था, आपने डिस्टर्ब कर दिया। मैं देख रहा हूँ नंबर।
0: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है?
1: आ जाते हैं उठ के, मैं तो फोन काट रहा हूँ, फोन रखी तरह। हेलो। हाँ बताइए।
0: तेरी जेब में फोन रखा होगा, वो बटन दब रहा होगा बार बार।
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए, आप दो बार फोन कर चुके हैं, आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है। आप बताइए मुझे प्लीज, क्या काम है?
0: हेलो।
1: फिर कोई यार, आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार? मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं।
0: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, मैं फोन नहीं कर रहा।
1: तो आप गाड़ी चलाइए। नहीं, आप अपनी गाड़ी चलाइए, आप अपना काम करिए, फोन मत करिए मुझे कम से कम यार, फोन मत करिएगा बस यहाँ पे।
0: फोन नहीं कर रहा अभी।
1: आप देख, बदतमीजी से बात मत करिए, आप समझ गए? मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं यहाँ से। है ना, मेरे चप्पल लेके आ, ये मेरे हाथ में चप्पल है, मैं बता रहा हूँ। मैं
0: चप्पल
1: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे। फोन
0: क्यों आराम कर दिया तुम जैसे?
1: जीना भाग यहाँ से, भाग। इस बार अगर कर दिया ना तो बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा। चप्पल चप्पल है मेरे हाथ में।
0: फोन आ रहा है, मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले।
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, मेरी बात सुनिए। अभिषेक, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं, तुम मुर्गा बन गए हो। ये सारी कॉल्स मैंने करी थी।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
3: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
4: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
5: दोनों मिलेगा, दोनों मिलेगा।
6: भारत का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.
8: O chalne di kuri, o chalne di kuri.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: खट खट
1: हुरेट
0: अखबार
1: अखबार हु
0: अरे अखबार बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
1: खट खट हु दैट
2: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

सलाम नमस्ते कतर वालों, क्या हाल चाल। हाँ जी, हाल चाल तो आपके सबके अच्छे ही होंगे, लेकिन एक दिन मैं ऐसे ही बैठ के सोच रही थी और मैं सोच रही थी कि हमारे पास ना बैक ऑफ द माइंड कितने काम है करने के लिए, हमको ये भी करना है, सलाम नमस्ते कतर वालों, क्या हाल चाल। हाँ जी, हाल चाल तो आपके सबके अच्छे ही होंगे, लेकिन एक दिन मैं ऐसे ही बैठ के सोच

इसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन ये सच्चाई है. आई एम नॉट बीइंग अ मदर टू एवरीवन, लेकिन ये एक सच्चाई है जिंदगी की जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता. दैट इज हमारा फोन, जिसने हमारा सारा टाइम ले लिया है और पूरी अटेंशन हम अपने फोन को ही देते हैं. हम किसी इंसान से इतना नहीं जुड़े हैं जितना हम अपने फोन से जुड़े हैं. हमारे लिए हमारा फोन उतना इम्पॉर्टेंट है जितना कि सांस लेना. बस उसी बात पे मैं एक एग्जांपल कहना चाहती हूँ. मेरी पर्सनल लाइफ में जो मैंने फेस किया है वो ये है कि फ़ोन ने मेरी ज़िंदगी का टाइम इतना ले लिया है कि मुझे मेरे लिए टाइम कम लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी हॉबीज़, जैसे मुझे आर्ट का शौक था, डांस का शौक था, गाने का शौक था, ये सब शौक ना मैं अपने ना करके मैं अपने फ़ोन पे लोगों को करते हुए देखती हूँ. एंड आई फील सैटिस्फाइड कि हाँ चलो कोई कर रहा है फॉर मी. बस यही हैबिट जो है फ़ोन ने मेरे अंदर डाल दी है. आई होप आप अगर इस बात पे एग्री करते ना तो मुझे ना ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइएगा. इंस्टाग्राम हैंडल पे जो है मिर्ची ईशा के नाम से, एंड ऑल्सो आप मिर्ची वन कतर पे भी बता सकते हैं. 5110896 पे भी आप बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं. भाई मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि सारा टाइम मेरा मेरी हॉबीज को खत्म करते हुए लोगों की देखते हुए मेरा निकल जाता है. और इसी के साथ आज हम शो शुरू कर रहे हैं हमारा मिर्ची वीकेंड वाइज, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इवेंट्स की. स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन. इट्स हॉट. मेरे

0: Hey. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
1: Hello,
2: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
1: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
2: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबीर सिंह बोल रहा हूँ.
1: हाँ जी.
2: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
1: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
2: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे 3 लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
1: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
2: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं मेरे को पता था. मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
1: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
2: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम. आपका
1: इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
2: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही हैं?
1: नहीं मत सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
2: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
1: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
2: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
1: हाँ बताइए
2: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
1: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
2: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे.
1: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब रुकू.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस.
5: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट.
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
6: 89.6
3: FM, Mirchi 1. It's hot.

इमेजिन कीजिए कि सुबह के 6 बजे जब दोहा प्रॉपरली उठा भी नहीं होता है और आप निकल चुके हैं एक अनफॉरगेटेबल ओशन एडवेंचर पर। डेस्टिनेशन है अल रुवेसी। दोहा से अराउंड 1 घंटे का ड्राइव है और यहाँ से शुरू होती है आपकी व्हेल शार्क स्पॉटिंग विद कूल कतर। जी हाँ, बोट जैसे ही ओपन सी में पहुंचती है तो एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है क्योंकि सामने आ सकती है ओशन की सबसे जेंटल एंड जायंट वाली शार्क, व्हेल शार्क्स। यस, यू हर्ड दैट राइट यार, व्हेल शार्क्स को आपको स्पॉट करना है तो जाना तो बनता है। और सबसे अमेजिंग पार्ट जो आपको इसके इनके साथ मिलेगा दैट इज कि आप इनके साथ स्विम भी कर सकते हैं एंड एक सेफ और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं, स्पॉट कर सकते हैं एंड मतलब परफेक्ट एक जो पैकेज है ना वो ले सकते हैं। तो भाई देर किस बात की है, 6 घंटे का ये एडवेंचर ट्रिप है, जून से सितंबर के सीजन में ही अवेलेबल होता है हर साल, जहाँ पे आपको स्नैक्स भी मिलेंगे, रिफ्रेशमेंट्स भी होंगी और सेफ्टी इक्विपमेंट भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपके अंदर का भी थोड़ा सा एडवेंचर और समुद्र के साथ एक मैजिकल मेमोरी बनाने का क्रेज जाग रहा है ना, तो बस उसको जगा के रखिए क्योंकि कूल कतर के साथ बुक कीजिए आज ही अपना व्हेल शार्क एडवेंचर और इस वीकेंड एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

कतर को जैसा हम आज की डेट पे देखते हैं वैसा ही कई साल पहले नहीं था। बहुत बड़ा चेंज कतर में देखा गया है। और अगर आप इस चेंज को देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कतर ने कहां से शुरू किया और किस तरीके का लाइफस्टाइल था उसका पहले, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए एक ऐसी जगह जहां पे आप बहुत साल पीछे चले जाएंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कतर की हिस्ट्री, लाइफ, किस तरीके से ट्रेडिशनल होम्स होते थे, विलेज स्ट्रीट्स होती थी, हेरिटेज सब डिस्प्ले है, किस तरीके से लोग पहले ज़माने में रहते थे, किस तरीके से वो व्हीकल्स जो हैं उनमें ट्रैवल करते थे। एंड उसके अलावा आपको ये ब्यूटीफुल सी कंट्री की प्राइवेट कलेक्शन आपको मिलेगी सिर्फ एक जगह, दैट इज़ शेख फैजल बिन कासिम अल थानी म्यूज़ियम में। एक और बात बता दूं कि हर कॉर्नर जो है ना वहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्टोरी बताएगा जो आपको तो फैसिनेट करेगा ही लेकिन आपके बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब जैसे कि वो कतर हिस्ट्री भी एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जब वो कतर की हिस्ट्री को देखेंगे दे विल फील फैसिनेटेड एंड दे विल फील कि यार मुझे और जानना है कतर के बारे में, वाकई में ऐसा फील होगा। और अगर आप इस म्यूज़ियम में पहले जा चुके हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर बताइएगा कि आप गए थे बच्चों के साथ और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था। आप मिर्ची वन कतर पे भी बता सकते हैं और मिर्ची ईशा पे भी ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा था। और उसके बाद या उससे पहले कभी भी आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक अल समरिया इस्टेट है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं पीसफुल सराउंडिंग्स। यहाँ पे आपको अरेबियन ऑरिक्स भी मिलेंगे, उसके अलावा आपको पीकॉक्स भी मिलेंगे। ये सब कुछ आपको मिलेगा शेख फैजल बिन कासिम अल थानी म्यूज़ियम के पास। एंड अगर आप नहीं गए हैं तो जाइएगा ज़रूर। इस वीकेंड बच्चों को लेके जाइए और इन्जॉय करिए इस वीकेंड को। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खट खट।
6: Who's that?
5: अगर कर।
6: अगर कर who?
5: अगर करना है तो कर, वरना छोड़ दे।
6: खट खट। Who's that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

अब मुझे लगती हैं सारी पहेलियाँ। जी हाँ, पहेली तो लगेगी ना, क्योंकि अब आफ्टर 30s या 35 के अबव आपका गाना बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप बोलते हो डॉक्टर दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, यही रह गया है मेरी जिंदगी में। अब ये गाना इस प्रकार का हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स आइसक्रीम से कोई कैसे पीछा छुड़ा सकता है ना। और आइसक्रीम का नाम सुनते ही दूर कैसे रहा जाए भाई, आइसक्रीम का नाम से मुंह में पानी आने लग जाता है, ठंड सी लगने लग जाती है, सनसनी सी होने लग जाती है। तो बस अगर आपको भी ऐसा ही एक इवेंट चाहिए ना, ठंडा ठंडा सा एकदम कूल करने वाला, तो आपके लिए एक इवेंट लाई हूं। हाँ जी, नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल आइसक्रीम शो होने जा रहा है ओएसिस स्टेज मॉल ऑफ कतर में, जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं इस ब्रांड न्यू शो को। और ये एकदम नया होने वाला है, पहले आपने शायद कभी नहीं देखा होगा ऐसा शो जहाँ पे आपको आइसक्रीम शो देखने को मिल रहा है। भाई गॉड यार, क्या होने वाला है ये तो मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन जाके देखना जरूर है कि होगा क्या। एंड उसके अलावा आपको ये 3 अक्टूबर तक, माइंड यू 3 अक्टूबर तक ही है ये, जाना चाहते हैं इस वीकेंड जाइए, 4:30 PM से 8 PM तक ये रहेगा। और आप इंजॉय कर सकते हैं इस वीकेंड एक ठंडा ठंडा माहौल के साथ, कूल कूल माहौल के साथ इंजॉय कर सकते हैं आइसक्रीम शो को। और बस ऐसी मजेदार बातों के साथ सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को, ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी बिल्कुल बताइए सवाल क्या है
0: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है कैसे करूं
1: अरे तो सिंपल है ना ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ

बचपन से ना आज तक मैंने एक कहावत जरूर सुनी है अपने बड़ों से, दैट इज कि जैसा देश वैसा भेष। एंड इट सिंपली मीन्स कि जिस देश में आप रहते हो उस देश का ट्रेडिशन कल्चर को इतना करीब से देखिए और इतने करीब से उसको यू नो फॉलो करिए ताकि आपको लगे कि आप इस कंट्री के ही फैमिली मेंबर हो। तो बस अगर आपको भी मेरी तरह इन ट्रेडिशंस को और क्रिएटिव साइड्स को देखना पसंद करते हैं या आप उसमें यू नो अपने आप को इंडल्ज करना डिग करना पसंद करते हैं ऐसे कल्चर में, तो आपके लिए एक इवेंट लाई हूँ। जी हाँ, बता दूँ कि होने जा रहा है मीना डब्ल्यू फीना, जो हो रहा है आउटडोर कोर्टयार्ड अल हजम में, एंड ये 24 सितंबर से शुरू हो चुका है एंड 24 अक्टूबर तक रहेगा। तो नो हरी, आप आराम से जाइए जब मर्जी। एंड इसके टाइमिंग्स हैं 3 PM to 11 PM। तरह इन ट्रेडिशंस को और क्रिएटिव साइड्स को देखना पसंद करते हैं या आप उसमें यू नो अपने आप को इंडल्ज करना डिग करना पसंद करते हैं ऐसे कल्चर में, तो आपके लिए एक इवेंट लाई हूँ। जी हाँ, बता दूँ कि होने जा रहा है मीना डब्ल्यू फीना, जो हो रहा है आउटडोर कोर्टयार्ड अल हजम में, एंड ये 24 सितंबर से शुरू हो चुका है एंड 24 अक्टूबर तक रहेगा। तो

जो कतर की प्रॉपर जो यू नो द ट्रेडिशन शो करता है, हेरिटेज शो करता है, इवन बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो शायद आपको नहीं पता होगी कतर की, वो भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। तो अगर आप जाना चाहते हैं, क्रिएटिव साइड देखना चाहते हैं कतर की, जाइए इस वीकेंड और इन्जॉय करिए, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम, बिकॉज आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, फैमिली के साथ शाम को जाके इन्जॉय कर सकते हैं। और अगर आप भी मेरी तरह पसंद करते हैं ऐसी नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, तो जरूर जाइएगा। And stay tuned with me only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: Milci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La virba la burga.
2: Milci, burga.
3: हेलो
4: हेलो विनीत जी।
3: हाँ जी
4: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: सही हाँ,
4: हाँ
3: मैं तो चल रही है।
4: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
4: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं
3: 9:30-10 बजे तक। ये बताओ ना बच जाएगा?
4: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
4: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
4: नहीं वही वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा

0: जाएगा। मिस्टर थॉमस, ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए।
1: हेलो,
0: हाँ विनीत जी, मजा आया। ये मिस्टर थॉमस, ये
1: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
0: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितनी बजे चल रहे हैं सर?
1: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
0: अच्छा सर, मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे।
1: हेलो हेलो,
0: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
1: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये? है
0: विनीत जी, मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
1: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
2: विनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
1: अच्छा भैया, आप मेरे यहाँ वाले थे, बजाने वाले थे?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: खटखट पूरे
5: बनता
4: बनता हूँ।
5: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
4: खटखट हूँ दैट,
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

कर हर मैदान फतेह। ये गाना ना मेरे दिल के बहुत करीब है। इस गाने को गाया गया है बाय श्रिया घोषाल एंड सुखविंदर सिंह फ्रॉम द मूवी संजू। लेकिन ये गाना मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि जब मैं कतर में अपना लाइसेंस का एग्जाम देने जा रही थी तो थ्रू आउट दैट जर्नी जब तक मैं लाइसेंस के टेस्ट के लिए बैठी नहीं तब तक मैं ये गाना सुनती रही और सच्ची में मुझे ऐसा लगा कि आज मैं फतेह पाकर ही रहूंगी। एंड आई वाज डैम श्योर और हुआ भी वही, मुझे उसी समय लाइसेंस मिल गया। बट वही बात होती है कि अगर आप अपना प्रस्पेक्टिव पॉजिटिव रखते हो तो हर चीज पॉजिटिव होती है। एंड इसी के साथ एक और गाना जो है मुझे बहुत इंस्पायर करता है, दैट इज फ्रॉम द मूवी लक्ष्य। लक्ष्य का जो टाइटल ट्रैक है संग बाय कर एहसान लॉय एंड लक्ष्य मूवी से ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की मूवी थी। ये बहुत खूबसूरत मूवी और इस ट्रैक में भी जो बातें बोली गई ना बड़ी इंस्पायरिंग है कि भाई यही लक्ष्य है तेरा, यू हैव टू गो ऑन। तो इतना इंस्पायर्ड लगता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि ये गाना सिर्फ मेरे लिए ही बना है टू इंस्पायर मी व्हेन आई एम वेरी लो इन माय लाइफ। ऐसे ही आपके भी बहुत इंस्पायरिंग सॉन्ग्स होंगे। कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको बहुत इंस्पायर करता है मुझे जरूर बताइएगा, मेरे मिर्ची वन कतर अकाउंट पे बताइएगा या फिर आप मुझे मिर्ची ईशा पे भी बता सकते हैं। एंड ऑल्सो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 5000 1896 पे मैसेज करके बताइए कि आपका ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आपको आपके लो टाइम पे आपको अपलिफ्ट करता है। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

कुछ ही दिन पहले मेरी बेटी ना एक छोटा सा सीड लेके आई थी और बोली कि मुझे ना ये सीड घर पे लगाना है अपने हाथों से। और उसने उसको लगाया भी, उसने उसको लगाया और उसको रोज पानी देती रही। दिन बीते, वीक्स बीते, बहुत सा टाइम हो गया, लेकिन शी वॉज गेटिंग लिटिल यू नो सैड कि इसमें कुछ आ नहीं रहा है, कोई निशानी नहीं दिख रही है कि ये बढ़ भी रहा है या नहीं। एंड आफ्टर फ्यू मोर डेज उसके पेशेंट्स को यू नो टेस्ट करते हुए इस प्लांट ने थोड़ी सी झलक दिखाई, थोड़ा सा जो सीड है उसने हल्का सा अपना ग्रोथ दिखाई, वो हल्का सा ग्रीन रंग का जो प्लांट है ना वो ऊपर ऐसे आ गया। और उस छोटे से लीफ ने मेरी बेटी के फेस पे बहुत ही खुशी और एक जो एनर्जी थी ना उसकी, वो इतनी पॉजिटिव हो गई, इतनी खुश हो गई वो। तो इससे ना मेरी बेटी ने एक चीज़ ज़रूर सीखी कि ग्रोथ अक्सर ना बहुत साइलेंटली होती है, बहुत क्वाइटली होती है। ग्रोथ ऐसे नहीं होती कि फटाक से हो गई और शोर के साथ आई, नहीं, ग्रोथ आती है बहुत साइलेंटली और हम शायद उसको परख भी नहीं पाते हैं। शायद हम अभी भी ग्रो हो रहे हैं और हमको पता भी नहीं है। तो बस मेरी बेटी को तो बहुत अच्छा लेसन मिला कि भाई लाइफ में कीप ऑन गोइंग, कीप बिलीविंग एंड बी पेशेंट विद योरसेल्फ, क्योंकि क्या पता कल किसी मोड़ पे आपका ये जो सब्र है यही काम आए। बस इसी के साथ वो बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि पेशेंटली कोई भी काम करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी करना पेशेंटली ही है अगर आप उस गोल तक पहुंचना चाहते हो। सो बस मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: गली बॉय
1: क्या बोल रहे एमसी शेर।
0: अरे अपन कुछ करते ना यार अपने पब्लिक के लिए,
1: करते ना अब पटेलों के लिए भाई,
0: अपने पाशा लोग के लिए।
1: ओ एक नंबर।
0: तुम किधर हो? किधर हो तुम अभी?
1: बॉम्बे 17 में बात। तुम किधर हो?
0: पास 9 98.3 न्यूज़।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

बातें तो बहुत थी पर वक्त थोड़ा कम था। आपका साथ मिला तो हर पल कुछ खास था। और जब इस प्रकार की बातें शुरू हो जाएं तो समझ लीजिएगा कि जाने का समय आ चुका है। जी हाँ, और बस अब जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि खुश रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे याद जरूर करते रहिए। और उसके साथ अगर मैं चली गई अभी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे हाय हेलो भी भेज सकते हैं मिर्ची ईशा के नाम से, या मिर्ची वन कतर पे भी आप हाय हेलो बोल के मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का रिप्लाई आता है और आप लोग बताते हैं कि हाँ हम आपको सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई करिएगा। और अब लेती हूँ आपसे अलविदा, टाटा बाय बाय, टेक केयर और मिलती हूँ आपको अगले वीकेंड। स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
3: I like that song.

0: फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
4: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5.
3: हिट गाना सुनना आसान है, ये समझना मुश्किल है कि वो हिट आखिर क्यों हुआ। और वही तो हम करते हैं हर हफ्ते के वो 20 गाने जो सबकी जुबान पर हैं। लेकिन मैं सिर्फ उनका काउंटडाउन नहीं करता, मैं उनके पीछे की कहानी ढूंढता हूँ। किस आवाज ने गाने को पहचान दी, किस कैरेक्टर ने उसे यादगार बना दिया, और कैसे एक गाना फिल्म से निकल कर हमारी जिंदगी में उतर गया। Hey, this is the Mirchi Top 20. मैं हूँ सुरेन, गाने आपके, कहानियाँ मेरी, and we kickstart the countdown with गाना नंबर 20, ऊंचा लंबा कद, the rehashed version from Welcome to the Jungle.
4: Number 20.

0: फुल ऑन मसाला, फुल ऑन मैडनेस, चाहे 2007 हो या 2026। लेकिन बॉलीवुड पिछले 10-15 साल में एक अजीब फेज से गुजरा है। कभी स्केल, कभी VFX, कभी स्पेक्टिकल, जैसे फिल्म को यादगार बनाने के लिए सब कुछ बड़ा होना जरूरी था। लेकिन अब शायद फिल्म मेकर्स को समझ आ रहा है, फिल्म बड़ी नहीं, कहानी और कैरेक्टर्स अनफॉरगेटेबल होने चाहिए। रणवीर का एनिमल, रणवीर का धुरंधर, और फिर एक ऐसे एक्टर जिनके कैरेक्टर्स ने ये काम सालों पहले ही कर दिया था। द नेम इज अजय देवगन, चाहे वो ओमकारा बने।
1: अरे तुम
0: या फिर बाजीराव सिंघम, दीज आर अजय देवगन टू मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स। लेकिन मेरे लिए पर्सनली विजय साळगांवकर ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। दृश्यम ने दिखा दिया कि ऑडियंस को सीट से बांधे रखने के लिए VFX, एक्सप्लोजन्स इनकी जरूरत नहीं है। एक आदमी, एक सीक्रेट और एक किलर कैट एंड माउस गेम ही काफी है। और आयरनी देखिए, दृश्यम की फिल्में अपने म्यूजिक के लिए कभी याद नहीं की गई। एंड बिफोर आई गेट टू दृश्यम, ये बता दूं कि नंबर 19 पर अजय सर का एक और अवतार हमने देखा था इन धमाल 4। उसका गाना साड़ी हैपेंस टू बी गाना नंबर 19। लेकिन गाना नंबर 18, वेल दृश्यम की दुनिया, वहीं से पहला गाना निकल कर आ रहा है। This is Vingansa, सिद्धार्थ बसरूर की आवाज में, रवि बसरूर का म्यूजिक, आमिल खान के शब्द, from दृश्यम, the conclusion.
2: Number

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: हेलो
3: हाय ये से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो
3: हाय ये Hello? फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार, अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं कभी वो दबा रहे हैं, आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका
2: वही मैं सुधरा था, मतलब लगा।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया
2: जी।
3: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: खट खट
1: कौन है?
0: अज्जू।
1: अज्जू कौन?
0: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए
1: खट खट हो दैट
2: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 मिर्ची इट्स हॉट।
3: Only on Mirchi. It's hot. Number 16.

Shararat in the voices of Jasmine Sandlars and Madhubanti Bagchi. Ekdam unapologetic Bollywood madness. Aur shayad isliye ye gana yaad reh jata hai. Lekin ek gana countdown se bahar ho chuka hai. Iska exit mujhe genuinely surprise karta hai. To phir aao. Now, आवारापन 2 के तीन गाने अभी भी चार्ट्स में हैं, लेकिन आवारापन की ओरिजिनल फिल्म का ये गाना तो फिर आओ अब इस काउंटडाउन पे नहीं है. एंड मुझे लगता है इसका एक रीजन है. कभी कभी किसी गाने को अच्छा सिंगर नहीं, सही आवाज चाहिए होती है. उसमें एक खास मैस्कुलिन वजन की जरूरत थी, एक ऐसी आवाज जो हार्ट ब्रेक को फील भी करे और कैरी भी करे. Somehow I always thought के यार ये गाना एक सिंगर की आवाज में बहुत अच्छा लगता. And that singer is Fahim Abdullah. अगर कोई इस गाने को वो पुरानी रूह, वो डार्कनेस और वो अच्छी पकड़ दे सकता था, then in my eyes I thought it could have been Fahim. और फिर Fahim ने अपने सोशल मीडिया पर इसका एक कवर गा के डाल दिया.

0: बस दर्द वही है, लेकिन आवाज का वजन बदल गया और गाना भी। और शायद इसलिए आवारापन टू का म्यूजिक इतना इंटरेस्टिंग है। ये पुरानी फिल्म को रिपीट नहीं कर रहा है, ये अपनी आवाज ढूंढ रहा है। लेकिन जिन्होंने तो फिर आओ गाया है इन आवारापन टू, उनका डेब्यू सॉन्ग हैपेंस टू बी वे जुनून, कंपोज बाय दिस जीनियस कॉल्ड मिथुन और लिखा है सईद कादरी साहब ने। दिस वन इज अ नंबर 15 फ्रॉम आवारापन टू।
1: नंबर 15।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: नीड टू सेंड मनी होम? मेक इट फास्ट, मेक इट सेफ, मेक इट अल्फा डॉन एक्सचेंज,
7: योर ट्रस्टेड चॉइस फॉर सेंडिंग मनी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज एंड गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स। विजिट आवर नियरेस्ट ब्रांच और डाउनलोड द अल्फा डॉन एक्सचेंज ऐप नाउ। फॉर असिस्टेंस कॉल और व्हाट्सएप 4453777।
8: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
9: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
8: This initiative is driven by GWM.
10: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: 89.6 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
14: Number 14.

0: सांसों की माला पे मिर्जापुर की पूरी एल्बम में मेरा सबसे फेवरेट गाना। एंड इसकी कहानी बहुत पुरानी है, मीराबाई और कृष्ण जी के बीच जो एक समर्पण की लोक कथा है, ये कॉम्पोजिशन उस एहसास से जुड़ा हुआ है। और ये मास्टरपीस तुफैल होशियारपुरी नाम के कवि को एट्रिब्यूटेड है। लेकिन जिस आवाज ने इस कॉम्पोजिशन को पूरी दुनिया की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बना दिया, वो आवाज थी उस्ताद नुसरत फतेह अली खां की। और नुसरत साहब को याद करते वक्त एक डिस्टिंक्शन करना जरूरी है, उनकी कला को सल्यूट करना किसी मुल्क की सियासत को सर्टिफिकेट देना नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक महान आर्टिस्ट का हिसाब चुका रहे हैं, उस इन्फ्लुएंस का जो उन्होंने हिंदी फिल्म म्यूजिक पर छोड़ा। थिंक ऑफ ऑल द सॉन्ग्स, तेरे बिना नहीं लगदा दिल मेरा सोनिया, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, निट खैर मंगा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, मेरे रश के कमर, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, मेरा पिया घर आया। यार कुछ रिक्रिएट हुए, कुछ की ट्यून्स को नए लिरिक्स, नए सिचुएशंस और नए नाम मिले, कुछ तो चुराए भी गए, लेकिन इन्फ्लुएंस इतना गहरा था कि नुसरत साहब की मेलोडिक वोकैबुलरी हिंदी फिल्म म्यूजिक का हिस्सा बन गई। और इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है एआर रहमान का एक गाना, जो उन्होंने नुसरत साहब के एक बहुत ही मशहूर गाने सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना से प्रेरित होकर मणिरत्नम की फिल्म गुरु के लिए एक कॉम्पोजिशन बनाई थी। और वो गाना था तेरे बिना, रिटन बाय गुलजार साहब, संग बाय एआर रहमान हिमसेल्फ। दिस हैपेंस टू बी माय पिक ऑफ द वीक।
1: पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड पोर्टल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड पोर्टल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: द लेट इरफान खान से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है, इज इट दिल्ली, इज इट मुंबई?
4: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
3: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: Cut, cut.
8: Who there?
7: Whom are you?
8: Whom are you who?
7: Are, whom are you looking for, madam?
8: Cut, cut. Who that?
2: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.
0: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
9: Number 12.

0: तमन्ना भाटिया,
1: we have a problem. एंड पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ, मुझे तमन्ना भाटिया के डांस नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन फैक्ट मुझे ये गाना स्त्री का बहुत ज्यादा पसंद है.
2: आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए.
1: एंड देन बैड्स ऑफ बॉलीवुड में ये वाला गाना तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था. इसके अलावा भी देयर क्वाइट अ फ्यू डांस नंबर्स. एक और याद आ रहा है यार, रेड 2 में गाना आया था नशा करके, एंड तमन्ना इन गानों में कमाल करती है. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. इनफैक्ट अगर आप बॉलीवुड के बेस्ट डांस नंबर्स की बात करोगे तो तमन्ना का नाम डेफिनेटली टॉप 3 स्पॉट्स में होगा. प्रॉब्लम गानों से नहीं है, प्रॉब्लम इमेज से है, क्योंकि तमन्ना साइंड अप फॉर दिस अपकमिंग फिल्म कॉल्ड वन अलॉन्ग विद सिद्धार्थ मल्होत्रा, जहाँ पे तमन्ना का एक प्रॉपर एक्टिंग रोल है. लेकिन उसका एक गाना आया है कॉल्ड थुमक थुमक, एंड वहां पर भी तमन्ना भाटिया इज डूइंग द सेम थिंग्स दैट शी डिड इन दी सॉन्ग्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड. वही ग्लैमर, वही अदाएं, वही सेंसुअलिटी, वही स्क्रीन परसोना. देखो, अगर तमन्ना सच में चाहती थी कि ऑडियंस उनको एक पर्टिकुलर इमेज में ना देखे, तो फिर उनको उस इमेज से जुड़ी कई चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए था. एंड लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, इमेज इंडस्ट्री बनाती है, लेकिन उस इमेज को तोड़ने का फैसला एक एक्टर को करना पड़ता है. आप एक फिल्म में कैरेक्टर बनकर आओ और अगले ही मिनट ऑडियंस को वही पुरानी तमन्ना दिखा दो जिसे वो डांस नंबर्स में देखने की आदत डाल चुके हैं, तो फिर ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होगी. वो बस वही देखेगी जो आप उसे बार बार दिखाते आए हैं, और यही बॉलीवुड का सबसे बड़ा ट्रैप है. पहले वो आपकी एक इमेज बनाता है, फिर उस इमेज को वो हिट बनाता है, और जब आप उसे तोड़ने की कोशिश करते हो तो वही इमेज आपको वापस खींच लेती है. लेकिन कुछ इमेजेस ऐसी भी होती हैं जिनसे एक्टर को नहीं पूरी जेनरेशन को कम्पीट करना पड़ता है. श्रीराम की छवि भी उन्हीं में से एक है. पिछले हफ्ते जिस भक्ति की प्रार्थना ने हमें पहली बार दर्शन दिए थे, इस हफ्ते वो नंबर 11 पर है. ये है जय जय राम रामायण.
3: नंबर 11.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
1: सर मैं जब भी घर आता हूँ ना पापा जाग रहे होते हैं, सोते ही नहीं है तो क्या करूँ?
2: अच्छा पापा जाग रहे होते हैं तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Only on Mirchi. It's hot. Number 10. Mirchi.

0: ये आवारापन, अरिजीत की आवाज अभी भी उस पुराने आवारापन का दर्द जिंदा रखती है। लेकिन जिस बॉलीवुड में सूरज बरजातिया ने 1989 में एंट्री ली थी यार, वो बॉलीवुड तो आज बिल्कुल अलग है। कैन यू बिलीव इट, 37 साल हो गए हैं लेकिन सिर्फ 10 फिल्म्स डायरेक्ट की हैं सूरज जी ने। फिर भी सूरज जी ने एक ऐसी दुनिया बना दी जो आज के बॉलीवुड में ऑलमोस्ट एलियन लगती है। यहाँ फैमिली में लोग एक दूसरे को तू तड़ाक करके बात नहीं करते, एक दूसरे को आप कहते हैं, बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, घर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, लेकिन कोई विलन नहीं होता। अपनी खुशी से पहले फैमिली की खुशी आती है और बदला लेने से ज्यादा सैक्रिफाइस की वैल्यू होती है। सूरज बरजातिया ने इंडिया को आइडियलाइज नहीं किया, उन्होंने एक आइडियल इंडिया इन्वेंट किया। और सवाल यह है, इतना बदल चुके बॉलीवुड में क्या इस दुनिया के लिए अभी भी जगह है? इसका जवाब हमें मिला सूरज बरजातिया से।
1: Somewhere I feel complete now. Even after so many years, people come here like this to see my cinema. My daughter is there, my son-in-law is there with the family, my sons are there, their in-laws are there, I have two granddaughters at home. So somewhere up, main kuch dena chahta hoon. Honestly, this is one of the most progressive films of mine, keeping my values intact. And director wohi hota hai jo kuch kehna chahta hai. So I just want to convey in this film how the generations can stay together. Of course, main kahin phansta hoon har film mein because main goodness mein aur goodness karna chahta hoon. To wo mere apne issues hai, but this is one of my most progressive and favorite films.
0: Generations ko saath rakhna aur apni values ko compromise kiye bina उन्हें आज के सिनेमा में लेकर आना, शायद सूरज जी की सबसे प्रोग्रेसिव बात यही है कि उन्होंने वक्त के साथ अपनी वैल्यूज बदलने से इनकार कर दिया और अब इसी दुनिया में मेलेडी लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड के अल्टीमेट हिट मशीन, द मैन हु कोलैबोरेटेड विद सूरज बरजातिया ऑन प्रेम रतन धन पायो, हिमेश रेशमिया। नंबर 9 पर डेब्यू हो रहा है ऑफ द टाइटल सॉन्ग ये प्रेम मोल लिया, संग बाय निहाल टोरो and the Nightingale of India, Shreya Ghoshal.
2: Number 9.

0: We be frontin' on the lines, relax, honey. Get it?
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: Mirchi. Iska bana, uska bana, sakka bana. Ya bana. Murga, murga. Nafiyat wala murga. Mirchi, murga.
3: हेलो हाँ जी बोलिए
4: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
3: आप बोलिए ना
4: कॉल आपने किया आप बोलिए
3: कॉल मैंने किया है हेलो
4: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
3: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
4: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
3: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
4: नींद में है क्या
3: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
4: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
3: आ जाते उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
4: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
3: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
4: हेलो
3: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
4: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
3: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
4: फोन नहीं कर रहा अभी
3: आप देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गया मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा
4: हूँ
3: मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
4: क्यों आराम कर दिया तुम
3: जीना बता रहा हूँ यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
4: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
3: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं
6: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
7: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
6: This initiative is driven by GWM.
8: Cut, cut.
9: Who that?
8: Jassi.
9: Jassi? Kaun si wali Jassi?
8: Jassi who has come, auntie ji?
9: Cut, cut. Who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.
1: Surin ke saath. Only on Mirchi.

तवाही नाम का गाना खत्म जरूर हुआ है, लेकिन असली तवाही तो सलमान खान ने मचाई हुई है। भाई ने बिग बॉस पर उन ट्रोल्स और उन जर्नलिस्ट को सीधा निशाने पे ले लिया जिन्होंने क्रिटिसिज्म और कैरेक्टर असैसिनेशन के बीच की लाइन ही मिटा दी थी। फिल्म बुरी है तो बोलो, एक्टिंग खराब है फिर भी बोलो, अगर वजन मेरा बढ़ गया है उस पर भी बोलो, लेकिन पर्सनल होने का लाइसेंस वो किसी को नहीं मिला है। और फिर सलमान खान ने उन जर्नलिस्ट को भी कॉल आउट किया जो एक्ट्रेसेस की तस्वीरें खींचकर उनके बॉडी पार्ट्स को जूम करके सोशल मीडिया पर बेचते हैं। उसे जर्नलिज्म कहना जर्नलिज्म की इंसल्ट होती है, वो रिपोर्टिंग नहीं है, दैट इज चीप वॉयरिज्म। और जर्नलिस्ट या पत्रकार नाम का शील्ड पहन लेने से वो रिस्पेक्टेबल नहीं हो जाता। और मुझे सबसे ज्यादा मजा एक आयरनी में आता है, बॉलीवुड में लाइन क्रॉस करना सलमान खान से बेहतर कोई नहीं जानता है, लेकिन इस बार भाई ने लाइन क्रॉस नहीं की, भाई ने एक नई लाइन खींच दी है। और जब कोई इंडस्ट्री के अंदर से इस टॉक्सिक कल्चर को रोकने की बात करता है उसे क्रेडिट मिलना चाहिए। बाय द वे द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द चार्ट्स इज चुनरी चुनरी जो है फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है, लेकिन ओरिजिनल वाले में सलमान भाई का स्वैगर याद है। नंबर 6।

0: 12, आज उसी भाई के नाम, सलमान खान के नाम, मेरा रीवाइंड ट्रैक। वो बात जो जर्नलिस्ट एंड ट्रोल्स की क्लास लगाने के बाद वो बिंदास बोल सकते हैं। बॉलीवुड, मैं हूँ हीरो तेरा।
1: टॉप 20 रीवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: किड्स आर बैक टू स्कूल। बिजी शेड्यूल्स, होमवर्क, क्लासेस, टेस्ट, फ्यू, so much to do. We know education is important, but hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
7: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility, but responsibility deserves a little fun too.
6: This initiative is driven by GWM.
8: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष।
9: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स।
10: जबरदस्त ट्रैक्स।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन।
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन।
14: इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: अमित त्रिवेदी का ये गाना बिना किसी एफर्ट के मूड हल्का कर देता है। लेकिन रोमांस की दुनिया में एक इंटरेस्टिंग चेंज जरूर आया है। पहले रोमांटिक गाने आते थे और उसके साथ में लव स्टोरी भी मिल जाती थी। प्राइम एग्जांपल फॉर एवर विल बी दिस सॉन्ग।
1: हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना।
0: फिर हमें रणबीर और दीपिका दिखे। सिर्फ पिछले साल हमें एक लव एंथम भी मिला।

आज जब इन गानों को सुनते हो तो एक कहानी सामने आ जाती है, लेकिन आजकल कुछ गाने ऐसे हैं जो आपको कहानी देते ही नहीं, इनफैक्ट आपको जगह देते हैं अपनी कहानी बनाने की। वारू फॉरएवर ये परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि 2018 में जब मिर्जापुर आई थी ये गाना उसी टाइम पर हमने पहली बार सुना था, लेकिन ये गाना अब सीरीज से बाहर निकल गया है। कपल वीडियोस, हार्टब्रेक एडिट्स, वेडिंग मोंटाजेस, अपनी फोटोग्राफ्स, अपनी यादें। मिर्जापुर ने सिर्फ गाना दिया था, इंटरनेट ने उसका रोमांस लिख दिया। और शायद आज रोमांटिक गानों की डेफिनेशन भी बदल रही है। पहले गाना आपको लव स्टोरी दिखाता था, आज गाना आपको अपनी लव स्टोरी दिखाने की जगह देता है, क्योंकि एवरीवन इज द डायरेक्टर ऑफ देयर ओन लव स्टोरी। और अपनी कहानी में सब शाहरुख खान है। और वही गाना रोमियो श्रेय घोषाल की आवाज में मिर्जापुर द मूवी में एक नई जिंदगी लेकर आ रहा है। और नंबर 3, प्रोबेबली द फास्टेस्ट क्लाइमर ऑफ द मिर्ची टॉप 20, ये है वारू फॉरएवर। नंबर 3।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अभिजीत सावंत, जब भी आपके बारे में सोचते मोहब्बतें लुटाऊंगा यही याद आता है। बारिशों के लिए एक

0: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत. थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन.
4: बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है.
3: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं.
4: oh, no.
3: फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं. बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
4: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो.
5: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
6: मेरे करण अर्जुन आएंगे.
7: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक.

गहरा हुआ सुनते ही वो बर्फीली पहाड़ियां, रणवीर सिंह, सारा अर्जुन एक बाइक पे बैठे हुए, वो सारे विजुअल जहन में आ जाते हैं। और शायद ग्रेट फिल्म सॉन्ग्स की एक खूबसूरत क्वालिटी यही होती है कि आवाज, गाना और चेहरा एक ही याद बन जाती है। लेकिन बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे भी हैं जहां गाना याद रह गया लेकिन चेहरा बिल्कुल नहीं याद आता। और कभी कभी इसका रीजन सिंपल है, कास्टिंग इज ऑल रॉन्ग, गलत है।

ये गाना आई एम श्योर कि आपकी प्लेलिस्ट में आज भी मौजूद है। इस गाने का नाम है मौला मेरे मौला फ्रॉम द फिल्म अनवर और इसे बनाया था मिथुन ने। गाना आज भी जिंदा है, लेकिन ऑनेस्टली एक सवाल का जवाब बताएं, क्या आपको इसके हीरो याद है? नहीं ना, लेट मी टेल यू द नेक्स्ट सॉन्ग।

अरे खूबसूरत गाना साइबो फ्रॉम शोर इन द सिटी, एंड ये गाना कितने लोगों को याद है, लेकिन फिल्म कितने लोगों को याद है? फेसेस तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ऑडियंस कभी कभी गाने को एक्टर से आजाद कर देती है, लेकिन इसका ऑपोजिट भी होता है जब कास्टिंग इतनी परफेक्ट होती है कि गाना सुनते ही एक्टर की आंखों में वही इमोशन दिखने लगता है जो सिंगर की आवाज में हम सुनते हैं। शायद इसलिए आज का जो नंबर वन गाना है वो नंबर वन पे है, क्योंकि जब जब आपके कानों में तेरा मेरा रिश्ता नाम की आवाज गूंजेगी, इमरान हाशमी का चेहरा आपकी नजरों के सामने होगा, पूरे हार्ट ब्रेक के साथ, उस दर्द के साथ। बिल्कुल उसी इंसान के लिए बना हुआ ये गाना। इट इज नंबर वन वंस अगेन अनडिस्प्यूटेड ऑन द मिर्ची टॉप 20। तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज नंबर वन।

0: हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत किसी रिश्ते को बनाता है वक्त। अनफॉर्चुनेटली मेरा वक्त इस शो पे अभी खत्म हो गया है, एंड दैट ब्रिंग्स अ क्लोज टू दिस एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20। ये वादा है कि मैं आपको फिर मिलूंगा यहीं ऑन द मिर्ची टॉप 20, 20 गानों के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। अंटिल देन, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hut.
3: Hello, ये हंसा से मेरी बात करो भाई.
4: हेलो, क्या बोल रही हूँ मैं?
3: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
4: हाँ जी.
3: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
4: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
3: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे, तीन लोगों ने आपको कॉल किया है, डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे जे जे जे जे, ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
4: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
3: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
4: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
3: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम.
4: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई मेरे पास.
3: दफा 300 ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही
4: है, मत सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार
3: होगा आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ पे श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करे जा रही है मेरे से.
4: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
3: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
4: हाँ बताइए
3: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
4: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
3: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जी जी जी.
4: यार आप लोग

0: Beat ke saath only on Mirchi. It's hot. मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
1: किड्स आर बैक टू स्कूल बिजी शेड्यूल्स होमवर्क क्लासेस टेस्ट फ्यू सो मच टू डू वी नो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट बट हे लिटिल मोमेंट्स ऑफ फन आर इम्पोर्टेंट टू सो आर यू रेडी टू मेक योर स्कूल डे अ लिटिल मोर एक्साइटिंग
2: बिकॉज मिर्ची रिचार्ज ड्रिवन बाय GWM इज कमिंग टू योर स्कूल मिर्ची आरजेस विल बी देयर विद फन गेम्स मस्ती एक्साइटिंग प्राइजेस एंड लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस बिकॉज लर्निंग कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजर्व्स अ लिटिल फन टू
1: दिस इनिशिएटिव इज ड्रिवन बाय GWM
3: हेलो शॉप्स Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं।
4: Office के toilet में toilet paper white नहीं, yellow लगाओ, profit आएगा।
3: Relative से advice लो तो कहते हैं।
5: काम को time दो, 25 घंटे काम करो, dark circles होंगे तो future bright होगा।
3: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ promotion fund के लिए, जिसके लिए आप 50% equity ले सकते हो।
6: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट
7: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची टेक योर पार्टनर विद अस नाउ योर बिजनेस विल गो वाओ कॉल नाउ 7070-7687
8: लेडीज एंड जेंटलमैन
9: ऑन अ राइड
10: क्लब मिर्ची

वेलकम बैक पार्टी पीपल्स, लव मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंदिका के साथ। वीकेंड रूल नंबर वन, डोंट ओवरथिंक योर प्रॉब्लम्स। रूल नंबर टू, इफ यू एब्सोल्युटली मस्ट ओवरथिंक, डू इट विद कैल्विन हैरिस प्लेइंग लाउडली। टेल मी हाउ

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: दोस्ती का गुस्सा है मैडम. No sorry, no thank you.
2: भाई साहब, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं, entertainment चाहिए.
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ entertainment खूब मिलेगा.
4: खूब मिलेगा. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन.
6: It's hot.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
2: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
4: Ladies and gentlemen.

सबको पीस चाहिए पर व्हाट्सएप ग्रुप म्यूट करने की हिम्मत किसी में नहीं है। मुझ में है यार, दीदी शेरे बलोच है, ठीक है, और आपकी खातिर यहाँ पे बैठी है विथ क्लब मैची।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
3: विनीत जी, नमस्कार। जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर, क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही है, हाँ मैं तो चल रही है।
3: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई, हमारे जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बच जाएगा?
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चढ़ रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चढ़ेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चढ़ने वाले चढ़ाएंगे।
2: हेलो हेलो,
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद का बजा रहा है ये?
3: मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
2: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया सर, आप बुरा मत मानिए।
2: अच्छा भैया मेरे
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो।

मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द गाइस स्ट्रेस हैड अ फिजिकल एड्रेस वी वुड लाइक टू सेंड इट समवेयर फार फार अवे प्रेफरेबली चप्पा चप्पा अवे फ्रॉम अस बिकॉज़ दिस वीकेंड इज बुक्ड फॉर डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द गाइस.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है।
2: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है।
1: हाफ पे बैक मतलब
2: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली।
1: वाओ, किस किस चीज पे?
2: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज।
1: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी।
2: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की। हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
3: ज़ाहिर हूँ।
4: ज़ाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
3: खट खट, who that?
5: Only on 89.6 Mirchi One. Mirchi, it's hot.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go.
7: On a ride.

बहाने की जरूरत नहीं। डीजे रिचर्ड मिर्ची ओयोंतिका आपके साथ, यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ता है। म्यूजिक ऑटोमेटिक, शॉट बस्टर्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं थैंक्स टू रिची। लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है।
2: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है।
1: हाफ पे बैक मतलब?
2: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली।
1: वाओ, किस किस चीज पे?
2: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज।
1: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी।
2: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की। हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
3: तो सिर्फ छोरे करें।
4: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
5: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची 1। इट्स हॉट
8: लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अबे कौन है?
2: उत्तपा।
1: उत्तपा कौन?
2: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
1: खट खट, who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

से स्वेटी होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पे। क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो देगा। वी आर ऑफिशियली पास द पॉइंट ऑफ प्रिटेंडिंग दिस इज अ काम इवनिंग। इट्स नॉट एंड आफ्टर ऑल दैट वी आर गोइंग स्ट्रेट फॉर द एड्रेनालिन बिकॉज़ अपेरेंटली रिलैक्सेशन वाज नेवर द प्लान।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हाय, ये से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो
3: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार अपने मोबाइल से, कभी ये दबा रहे हैं कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका मुर्गा
2: तो वही मैं सुन रहा था, मतलब लगा।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
1: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
2: कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो,
5: ऑन अ राइड।

मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: Bas 24 ghante hi rahengi.
3: यार तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है।
7: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है।
6: हाफ पे बैक मतलब?
7: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली।
6: वाओ, किस किस चीज पे?
7: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज।
6: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी?
7: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की। हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
8: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
9: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
8: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
9: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
10: साले का खोपड़ी तोड़, साले का।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
3: आई लाइक दैट सॉन्ग।

0: फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है.
4: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है.
3: हाफ पे बैक मतलब?
4: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली.
3: वाओ, किस किस चीज पे?
4: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज.
3: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी.
4: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की. हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा. लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
5: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन.
6: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है.
5: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है, कैसे करूं?
6: अरे तो सिंपल है ना, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर. मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hut.
3: Hello,
4: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
3: हेलो, क्या बोल रही हूँ मैं?
4: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
3: हाँ जी.
4: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
3: थी किसी की, पता नहीं किसकी थी.
4: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है?
3: मैंने क्या किया?
4: आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे, तीन लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी? जे जे जे जे जे, ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
3: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करेगा.
4: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था. मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
3: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
4: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये
3: तो
4: जाना सनम.
3: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
4: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप.
3: ठीक है, मैं क्या करूँ बताइए ना?
4: आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही
3: है? और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
4: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ पे श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
3: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
4: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
3: हाँ बताइए
4: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
3: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
4: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
3: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब कुकड़ू को.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: बिग सेविंग्स, मेगा ऑफर्स इन स्टोर.
4: मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
3: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: इट्स हॉट.

0: supermarkets. Don't miss out. Visit your nearest Lulu hypermarket and make your anniversary shopping extra special.
1: Lulu hypermarket, where the world comes to shop.
2: Ja Simran, ja jee le apni zindagi. Ja beta, ja.
3: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
4: हिट गाने
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन।
7: इट्स हॉट
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन। वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
9: Club Mirchi.

0: supermarkets. Don't miss out. Visit your nearest Lulu hypermarket and make your anniversary shopping extra special. Lulu hypermarket, where the world comes to shop.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन,
5: Cheap.

फेस्टिवल क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका के साथ. वीकेंड रूल नंबर वन, डोंट ओवरथिंक योर प्रॉब्लम्स. रूल नंबर टू, इफ यू एब्सोल्युटली मस्ट ओवरथिंक, डू इट विद कैल्विन हैरिस प्लेइंग लाउडली. टेल मी हाउ

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अभिजीत सावंत, जब भी आपके बारे में सोचते मोहब्बतें लुटाऊंगा यही याद आता है। बारिशों के लिए एक अलग

0: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत. थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है.
3: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है.
2: हाफ पे बैक मतलब?
3: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली.
2: वाओ, किस किस चीज पे?
3: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज.
2: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी.
3: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की. हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा. लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन,
5: Club Mirchi with Oyon Dega and DJ Richard. Only on

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
2: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are going to go.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
6: क्लब मिर्ची विद ओयोंतिका एंड डीजे रिचर्ड, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
4: ऑन अ राइड।
6: क्लब मिर्ची विद ओयोंतिका एंड

लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ, यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ता है। म्यूजिक ऑटोमेटिक, शॉट बस्टर्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं थैंक्स टू रिची। लेट्स गो।

high, darling. I want to dance with you. Dance, dance of love.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
4: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
3: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जिंदगी मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जिंदगी मेरे साथ हो।

को पीस चाहिए पर व्हाट्सएप ग्रुप म्यूट करने की हिम्मत किसी में नहीं है। मुझ में है यार, दीदी शेरे बलोच है, ठीक है, और आपकी खातिर यहाँ पे बैठी है विथ क्लब मैची।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

स्वेटी होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पे। क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंदिका। We are officially past the point of pretending this is a calm evening. It's not. And after all that, we are going straight for the adrenaline because apparently relaxation was never the plan.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
7: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
8: बार बार।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट
11: लेडीज एंड जेंटलमैन। वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
12: ऑन अ राइड।
13: Mirchi

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
4: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी। तो बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
3: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
0: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go on a ride.
0: Club Mirchi.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

Yeah, भाई तेरा बस लिख तगाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौको, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए

0: भट्ट
1: भट्ट अरे भट्ट हूँ
0: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है
2: खट खट हू दैट
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट

0: Abi.
1: Cut, cut. Who that?
2: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot. It's hot.

0: Hot cut. Who that?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.